एक बार फिर सारे नरेंद्र वालों सत श्री अकाल एंड वेलकम टू द पंजाबी साइड ऑफ सरताल एंड वी होप यू एंजॉयड द फर्स्ट आवर एंड वी हैव लॉट्स ऑफ ग्रेट पंजाबी सॉन्ग्स कमिंग इन द नेक्स्ट आवर सो सिट बैक रिलैक्स एंड एंजॉय द नेक्स्ट पार्ट एंड रिमेंबर इफ यू मिस सम ऑफ द शो लॉग इन टू cfmu.ca एंड लिसन टू द ग्रेट ग्रेट ग्रेट शोज दैट वी हैव हियर एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड देम एंड लिसन टू व्हेनेवर यू वांट तो लो शुरू कर दें आज का पंजाबी प्रोग्राम दिस इज बब्बू मान बोलियां राइट हियर ऑन सरताल